जन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रपता सहै, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई,

सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा।

ध्याया, जिसनो कृपा करहें तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप बिछोड़िया।

काट कोई अबर ना त्याऊं, जो बर चाहो सुतम ते पाऊं। सेवक से कह मारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे।

बट बटकी जानै जा बुद्ध करख करा करतारा प्रजा धरत तब देहि अपारा जब या करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन।

जाओ, टीचर बदली जाओ, फिर तो कुछ भी नहीं ले जाना। पीएस टीचर तो कुछ नहीं ले जाए, दूर पर चलिए, फिर उसमें पढ़ जाते तीए को चौथे को, उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वो फिर भटकना जी तुरया फिरदा। भगती राता सत सदा बैरागी, आप मार मिला बने। जरा बैरागी हो के परमेश्वर की भगती विच अपने मन रंग के रखता, हूँ फिर कहते आपा भाव जरा हंकार से ना उन्होंने मार लिया कि परमात्मा ने उन्होंने अपने न मिला लिया। ऐसा उन्होंने नेता आप पाए धंधा लाए लख चौरा ही रिजक आप पढ़ाए, क्योंकि परमात्मा ने जीवन आपे पैदा करता, आपे धंधिया चला, आपे 84 लाख जूना जिते जिते है उन्होंने रिजक पहुँचा रहा। नाम नानक नाम त्याय सच राते जो तुख भागा सो कार कमावण। महाराज कहते हैं वो कार जड़ी गुरु के हुक्म सेवा की जाती पाँदी है, ये जीवन तो फिर उही करवाउंदा आ। इस करके जिन्हें ऐसा विश्वास किया वो नाम नूं ध्यांदे वो सच स्वरूप विच सदा वास्ते रते रहिंदे। माज महला तीजा अंदर हीरा लाल बनाया गुर कै शब्द पर फुरकाया, कहिंदे हीरे वांग शुद्ध लाल कौन प्यारा, परमात्मा ने अंतशकाने अंदर अपना टिकाणा बनाया। हीरे लाला वांग जिहड़ा अमोलक परमात्मा ने यह अंतशकाने अंदर टिकाणा बनाया, सतगुरु के शब्द करके फिर जेडे उत्तम पुरश है वही परख विच हांजी परखने विच आ जाते हैं। जेड़ा परख च पास हो गया वो फिर कि ना कि पहुँच जाता, क्योंकि हम टीचर को रहने वे रहने गुरु उस्ताद को उनके परख करनी है, जो परख पूरे उतरो फिर तो उन्होंने कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जिते पढ़ने पे थी उतो पढ़ाई छड़ के दूसरे टीचर को चल रहा, फिर टीओ को चल रहा, चौथे को चल रहा, तो कोई तो नहीं करना, बस है उन तुरे चलते। जिन सच पल सच बखाने सच उस पर टी ला बने, कहते जिन्हों के बुद्धि रूपी पल्ले परमेश्वर का सच्चा नाम है वो फिर सच का कथन करते, फिर वो अपने आप में सच्ची भगती नहीं करते है। और फिर जी प्रतीक्षा साधना रूपी कसवटी उत्ते ला के देखते दे, पूरे उतरते हैं। जिमें हूँ धन धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह गागर पड़ाती लवे ब्यास तो जल लैके आना, हजूर साहब कहे खूह हैं पर परख थी उन्हें यह नहीं किया कि मैं बुढ़ा हैगा थोड़ा तो को डंबी लगता तो मैं उत्थे क्यों भेज दें, इतने पानी है इतों लाया करूँगा खूह तो, पर 7 वजन से फिर 1-2 दिन नहीं 12 साल मीह जाए नेरी चले चखड़ झुले खुश हो गए लोग भी बोलियां ताने मार दे लिया दुख वास्ते कुड़मां दे बैठा है अपनी लज्जा नूं गवाई बैठा, पर सारियां सुनियां सुनियां करके सेवा च डटे रहे। तो फिर तो मीह नेरी सी वो जलाहे की खड़ी भी डिप है, जलाहा कहिंदा खड़का कौन है, कहिंदे आना कौन है अमरू नसावा आटुक वास्ते कुड़मां दे इत्थे दिन रात की कर रहा, कहिंदे चलिए मैं नसावा क्यों, धन गुरु नानक जी का सेवा। जदों वो फिर कंबली हो गई तो सतगुरु सच्चे पाए पता लगा कि महाराज ने फिर नमाणिया की मां नसाणिया की तान रोटियां की ओर रस्तियां की रस नपत्तियां की पन तेरिया की चिरन चीजियां चीज किन्ने वरदान दिते गुरता गद्दी गुरु नानक दी मिली। सो इस करके इस तरह इहदा नाम है जीवत पा हंकार तो मरना, कि हुक्म विच सेवा करनी कसवटी च पूरे उतरना। इस वास्ते पातशाह कहिंदे है कि जिन सच पल्लै सच बखाण सच कसवटी ला बणिया, वो फिर सच्ची कसवटी ला के परखदा भी ठीक है। आम वारी जो वारी गुर की बाणी मन वसा बने, असीं मन बाणी खरीद के उन्हां तों बाहर विरहार जांदे हां। ते जिन्हां ने गुरमुखाने परमात्मा दे नाम नूं हुक्म नूं मन च वसाया अंजन मन निरंजन पाया ज्योति जोत मला बणिया रहो, उन्होंने अंजन की है कि माया दे रह विच रह के निरंजन माया तों रह जिहड़ा परमेश्वर पा लिया उन्होंने फिर ज्योत न्योति परमात्मा ने अपने नाम मिला लिया। इस काया अंदर बहुत पसारा नाम निरंजन अत अगमा पारा, इस शरीर अंदर बहुत सब गुण का पसारा जिदा नाम निरंजन है निरंकार वो सारे वास्तमें ने बहुत वड्डा अगम भौक तो रह थे अपारा उदा पारावार तो रह थे, क्योंकि वह परमात्मा इसे काया के फिर आत्मा ज्योति करके निवास कर रहा। गुरमुख वह सो ही पाए आपे वक्त मिलावन, जड़ा गुरमुख हों परमात्मा पाँगा उन्होंने गुरमुखों बख्श के महाराज सच्चे पातशाह से मिला देंगे।

हे बीठल श्रोताजन, बीठल का अर्थ है वन स्टैंडिंग अलूफ, भाव माया दे प्रभाव तो परे रहन वाला, भाव प्रभु। मेरी जिंदगी दी बेड़ी चक्खड़ विच फस गई है, मैं इसनु चप्पू लान जोगा नहीं हां। प्रभु तेरे इस संसार समुंदर दा मैनू पारला बनना नहीं।

हे केशव, हे केसा वाले प्रभु, मेरे उत्ते दया कर। मेनू गुरु मिला ते इस समुद्र विचो पार लंघा।

तेरा नाम देव हे बीठल पाव हे प्रभु बेनती करता है। समुंदर विच ठल्ला पै रही हन, मेरी बेड़ी चखड़ दे मुंह आ पई है, ते मैं ना ही तरना जानता हाँ। मैनू अपनी बांफड़ा दाता बांफड़ा

इस गल तो कोई भी मुनकर नहीं कि आपां सारिया ने इस दुनिया की यात्रा मां की कुख तो ही शुरू की है। ता फिर मां नूं एक खास दिन क्यों याद किया जाता है? मां का दिन मनाने का पिछोकड़ इतिहास मुताबिक ग्रीक विच देवी की पूजा तो शुरू हुंदा है। इस देवी का नाम सी रिया।

गुरु रामदास साहिब जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 164 उपर सुशोभित बचना राही इस मां दे रिश्ते नूं इस तरह फरमांदे हन, माता प्रीत करे पुत खाए।

0: श्रोता जन, शास्त्रां विच इस्त्री शक्ति अखां नाल वेख्या ममता में महसूस कीतिया इस्त्री हर घाड़त विच ढलण वाली है। इस दे बावजूद भी जुगां जुगांतरां तों इस नूं नीमा विखाया जांदा रहा है। कई वारी औरत नूं जमदिया ही मार दिता अते दफना दिता जांदा रहा है।
1: पिछले समया अंदर जेकर ओ कर्मा नाल बच गई ता ए जमदिया ही बंधना विच पै जांदी सी। परदा प्रथा, सती प्रथा, बाल ब्याह, बहु ब्याह प्रणाली, दाज प्रथा आदि बंधन रूप हो इस्त्री नूं चंबड़े रहे हन।
0: किन्नी हैरानी दी गल है, पत्थर दी औरत दी तां पूजा देवी रूप विच तकरीबन सारे सभ्याचारां विच कीती जांदी सी अते अज भी हो रही है। पर हड मास दी औरत नाल बुरा व्यवहार भी नित दिखाई दिंदा है। नारी शक्ति नूं तां परवानिया जांदा सी पर होंद नूं तिस्कारिया जांदा सी।

गुरु नानक साहिब जी ने बखूबी नाल फरमाया है कि हे सतसंग भैनो ते हे सहेलियो, आओ प्यार नाल सतसंग विच इकट्ठियां होइए, सतसंग विच मिल के उस खसम प्रभु दियां गल्लां करिए जो सारियां ताकतां वाला है। हे सहेलियो, ओ सदा थिर मालक विच सारे गुण ही गुण हन, उस तों बिछड़ के ही सारे औगुण साडे विच आ जांदे हन।

0: सकती है। जे बाप दखल देन लग पिया, रोकन टोकन लग पिया, तां बच्ची दी काड़क नहीं कड़ी जा सकती। पिता ने संतोख रखना है। माता दा धरत महत है, जिवें धरती देंदी नहीं थकदी, खिमाशील है, तिवे मां कोलों सब कुछ लिया जा सकता है जे मां दा सत्कार किया जाए।
1: मां नूं समझ है कि केड़ी बात किस वेले कहनी है। मां दी असीस विच जिथे भावना है उथे भाव भी है। माता भानी जी ने मां रूप विच जो असीस श्री गुरु अर्जन देव जी नूं दित्ती, गुरु जी ने राग गुजरी विच अंकित कीती है। पूता माता की असीस, निमख न विसरो तुमको हर हर, सदा पजो जगदीश।
2: माता की आशीष, माता की आशीष, माता की माता की आशीष। पुता माता निमख न विसरो तुमको हर हर, निमख न

माता पानी जी ने असीसा दे पंडार विखेरते हुए कहा, पुत्र नाम जो जीवन दिंदा है सदा पींदे रहो, सदा ले तुहाडा उच्चा आत्मिक जीवन बनिया रहे, आत्मिक खुशियां कोल रहन नाल सब आसां पूरियां हुंदियां हन, जद आत्मिक आनंद कोल होवे तां चिंता कदे भी अपना जोर नहीं पा सकती।

0: நாளைக்கு தாசி ஒன்று சங்கல பிட்டாயோ மூன்று காத்துக்கு போனா
1: श्रोताजन असीं आशावादी हां कि साडा अज दा प्रोग्राम मामा नूं प्यार भरी श्रद्धांजलि भेंट करन दे नाल नाल आप जी नूं मां दे प्यार विच जोड़न लई सहाई होवेगा। सानूं सब नूं मां दी कुर्बानी दी कदर करनी चाहीदी है, पर जे असीं जिंदगी विच कुछ प्राप्त करना चाहुंदे हां तां मां दी खुशी प्राप्त करन लई उसदी इज्जत करना सिखिए। सुनो एक गीत मां दीआं असीसां

0: श्रोताजन तुसी ये प्रोग्राम साडे वेब पेज तो डाउनलोड करके भी सुन सकते हो। जानकारी ले नोट करो जी, साडा वेब पेज पता है www.singsabha.com। स्पेलिंग नोट करो जी, SINGHSABA। जी हाँ, सभा नु असी SABA स्पेल कीता है। क्यों ना नाल लगदा असी अपना ईमेल एड्रेस भी याद करा दीजिए। साडा ईमेल एड्रेस है जी GWSSA@thalas.net। जेकर तुसी ये प्रोग्राम इंटरनेट ते सुन रहे हो ता अपने विचार सानू ईमेल करो जी, अते अपने मुल्क दा नाम भी जरूर लिखो। साडी ये हमेशा ही कोशिश रहेगी कि तुहाडे विचारां दी रोशनी विच इस प्रोग्राम नू होर भी चंगेरा बना सकीए। याद रखो, ये प्रोग्राम विलियम लेक विच हफ्ते दे विचकार भी सुनिया जा सकता है। कुछ नवे अते पुराने टाइम इस तरह हैं। ऐतवार नवा प्रोग्राम 7:30 शाम नू, दूसरे दिना विच ये प्रोग्राम दोहराया जांदा है। सोमवार, बुधवार अते शुक्रवार दोपहर 12 बजे, मंगलवार, वीरवार अते शनिचरवार शाम नू 7:30 बजे। पंजाबी जवान दे प्रेमी मन ता नहीं करदा कि असी तुहाडे कोलों छुट्टी लेगी, पर की करिए, समा कदे किसी दा इंतजार नहीं जे करदा। अगले हफ्ते एक बार फिर नवा प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे। तद तक ले परमिंदर कौर, हरदीप कौर,
1: पलविंदर कौर
0: अते साडी सारी टीम नू इजाजत दियो जी।
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तलवार चल रही थी, चार चुफेरे लोथा ही लोथा नजर आने लगियां। एक एक सिंह दे उदाले सौ सौ वैरी ने घेरा पा लिया। सिंह की गिणती केवल 52 सी। वीरता का टाकरा करते हुए हजारा वैरिया दे आहु ला के बाबा तारा सिंह जी ते सारे सिंह शहादत का जाम पी गए। बाबा तारा सिंह जी की शहादत ने सिख कौम नूं अजिहा हलूणा दिता कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद कौम विच पैदा हुई फुट ते निराशा दूर हो गई। बाबा तारा सिंह जी की शहादत ने सिखां विच रोह भर दिता। सारी कौम ने उठ के सरकार दे जालम हाकमां नाल टक्कर लैनी शुरू कर दिती ते उदों तक आराम नाल नहीं बैठे जब तक देश विचों जुल्मी राज दीआं जड़ां पुट के सिख राज कायम नहीं कर लिया। बाबा तारा सिंह जी महान शहीद पर उपकारी निडर सिंह पूरन संत सिपाही ते मनुखी दर्द दे पुतले सन। इसे करके कौम अजिहे महापुरखां दी शहीदी तो प्रभावित होई ते इन्हां दे दुल्ले शहीदी लहू ने देश ते कौम दा इतिहास ही बदल के रख दिता। आओ असीं साडे वड्डे वडेरियां दीआं दित्तियां शहादतां ते उन्हां दे कीते परपकारां नूं हमेशा याद रखिए ते उन्हां दे पाए होए पूर्णियां ते चलण दा यतन करिए। इन्नियां कु बेनतियां करदे होए संत अतर सिंह जी मस्तुआने वालियां दे आशे अनुसार चलाई जा रही अकाल अकैडमी बड़ू साहिब दीआं विद्यार्थियां दा ढाडी जथा आज ही तो आग्या चाहुंदा है, इन्नी सेवा प्रवान करो, बुलाओ पते ते सारे गज गज वज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा।
1: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्यार नाल ते किसे जानवर नूं भी आवाज मारोगे वह भी समझ जांदा।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है।

पूरे घर से महल पाया, पूरे घर से महल पाया, पद पर पूरे घर से महल पाया, पद पर भाग्य में अनह

पाओ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो कर्म धर्म तत् ज्ञान संतां संग होए जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया पाइन सब निदान साहिब तुठिया सलोक महला पंजवां लदम लभण हार कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार नानक ब्याह ना।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमोह बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य

दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए, भगतां एहो आधार गुण गोविंद गाए, सदा सदा दिन रहन इको एक त्याई।

परे तत्काल हिन टिकन ना दिते। प्रभदास का दुख ना खब सकै हर जोनी जुते। मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते। दुख लगै बिल लाणिया नरक घोर सुते। कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते। सलोक महला पंजवा। राम जपो हो वडभागी हो जल थल पूर्ण सोए। नानक नाम त्याय बिघन ना लागै कोई। महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरै नाउ। नानक अन दिन बिलपते

आई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना हुए तेरा आवन जान रहाओ। सब तै उपाई परम भुलाई, जिस तू देव है तिसै बुझाई। सतगुर मिले तां सहसा जाई, किसहों पूजो दूजा नदर ना आया।

ऐकिन बूझिया रमैया आकुल री बाई रहाओ ज्यों अकाशे पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यों जल माजै माछलो मार्ग पेखणो ना जाई ज्यों अकाशे कड़ू अलो मृग तृष्णा।

धूप दीप नैवेद्य है बासा, कैसे पूज करह तेरी दासा, तन मन अर्पों पूज चिरामू, गुर प्रसाद निरंजन पाव, पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रवदास कवन गत मोरी, गुजरी श्री त्रिलोचन जियो के पदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अंतर माल निर्मल नहीं कीना, बाहर भेख उदासी, हृदय कमल घट ब्रह्म ना कीना, काहे भया सन्यासी, परमे भूली रे जय चंदा, नहीं नहीं कीनिया परमानंदा रहा, घर घर खाया पिंड बधाया, चिंता मुंडा माया, धूम मसान की भस्म लगाई, गुरबिन तत ना पाया, काए जपो रे काए तपो रे, काए बलोव पाणी, लख चौरासी जिन अपाई, तो सिमरो निर्बाणी, कायक मंडल कापड़ी यारे, अठसठ काए फिराही, बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी, कण बिन गाह के पाही, गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, सर्प जोन वल वल औतरै, अरि बाई गोविंद नाम मत बीसरै, रहाउ अंतकाल जो स्त्री सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बेसवा जोन वल वल औतरै, अंतकाल जो लड़के सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, दूकर जोन वल वल औतरै, अंतकाल जो मंदर सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, प्रेत जोन वल वल औतरै, अंतकाल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता मह जे मरै, बदत त्रिलोचन।

विमं सत आद भाव रतन परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नाद नूत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद पराभयं जस स्वस्त सो कृत कृतं पाव पूत भाव संभव्यं परमं प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट परगृहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह केवला।

हम विषम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली राहाल प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पहाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग च लूलै।

हम तिसकी गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया।

0: कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हो तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभु स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों भावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है तरक्ती रहाओ, जिनका हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ती, ज्यों नगुरा बहुबाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पासै शुक्ति, छका एक, देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई गुर चरणी चित लाइय, प्रभ हुए कृपाल कमल पर गाचे, सदा सदा हर त्याय रहाओ, अंतर एको बाहर एको, सब मह एक समाई है, काट अव घट रव्या सब ठाई, हर पूर्ण ब्रह्म दिखाई है, उस्तत करह सेवक मुन केते, तेरा अंत न कतहु पाई है, सुखदाते दुख भंजन स्वामी, जन नानक सद बल जाई है, देव गंधारी,
1: माई होन हार सो हुई है,
0: राच रहियो रचना प्रभ अपनी, कहां लाभ कहां खोई है रहाओ, कह फूल है आनंद बिखै सोग, कब हसनो कब रोई है, कब हूं मैल भरी अभमानी, कब साधु संग धोई है, कोई न मेटै प्रभ का किया, दूसर नाही अलोई, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जेह प्रसाद सुख सोई है, देव गंधारी, माई सुनत सोच पै डरत, मेर तेर तजो अभमाना, शरण स्वामी की परत रहाओ, जो जो कह सोई भल मानु, नाही ना का बोल करत, निमख न बिसरो ही ये मोरे ते, बिसरत जाई हौ मरत, सुखदाई पूर्ण प्रभ करता, मेरी बहुत इयान पजरत, निर्गुण क्रूप कुल हीन नानक हौ, आनंद रूप स्वामी भरत, देव गंधारी, मन हर कीर्त कर सदहु, गावत सुनत जपत उधारै।

मन ज्यो अपने प्रभ भावु नीचो नीच नीच अत नाना होए गरीब बलावु रहाव अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यों प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े आई ना।

परम सत्कार जो गुरु जी की साजी निवाजी गुरु रूप साध संगत सतगुरां दी अपार मेहर रहमत दा सदका।

में कृपा की दृगा में अंतर्भर्गं त्रभादी अगंजय गाधे शुभम सर्वभाग्यु सर्वानराग्य त्रिपुक्त स्वरूप हैं असज हैं असूत हैं कि नरकं तृणास हैं मृत्युल प्रवास हैं निरुक्त प्रवाह हैं सदैव सदा हैं विपुक्त स्वरूप है प्रदोष अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुक्त प्रवाह हैं अनुक्त स्वरूप है प्रदोष अनूप हैं जाग्री संग है नंग देखा पर मैं कर्म नारिगाद हैं अजय तय पूत है तूत है ना सदा सतंद पंद अपागत है विरागत है नाश है प्रकाश है निजंत है सुनंत है लेख देख है अलीश है पीख है टाय गाय सम्भ है गम है नील है नाद है अनित है सुनित है अजात है जाद है जरपुट छंद दव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणम सर्वं प्राणम सर्वं कर्मं सर्वं कर्मं सर्वं दूता सर्वं मुक्ता रसाबुल शांत तव प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं वपुते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाण वपुते अनंगी अनामे त्रिपंक्ति दृगा में निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता न रसागम व्रीगा मित्र मीगा सदैव प्रवाह अजय अजाय भगवती शांग तव प्रसाद के जार जूर है कि हाजर हजूर है मेसल कलाम है समास कलाम है कि सैव दिमाग है कि उसनों चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी रहा है कि राज करेंदा है करीमल कमाल है कि उस जमाल है गनीमल खराज है गरीबल नवाज है हरीफल सिकन है रासल पकन है कलंकन प्रणास है समर्थुल निवास है गंजल गनीम है रजाय करहीम है समासुल जवाह है कि साहब गराय कनाकंग प्रणास है बसुल नवास है कि सरबल

0: थोड़ी नजर क्रेज है अपनी जो नजरी सतगुर पाया। ए जियो बोते जन पर मैं तो सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर से उड़दा था को नहीं सब जुड़े लोग सुनाया। सतगुर मिले सतवा जिन सेवा बुआ जी से तो सतगुर आया।
1: गुरमुख ढूंढ ढूंढ।

तन फिटा फेड करे न मन झूठे चुली भरे कनानक सच चाहिए सच होवे ता सच पाइए।

पूजस नाहि हर हर नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत विख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म करिया सगल त्याग मन मध्य करिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तनेम कर बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव महा उदास तीसर थी वह अगन माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर भूम दान न्योली कर्म कर बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तो कि हम मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच कर दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कभू न दिखिया तर जल धोवे बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ हो कच्ची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उधरे पतित बहुमूच बहुत भयानक जमका पौ व्याप अनक जतन कर कृष्ण ना त्राप देख अनेक अग्न नहीं बुझे कोट अपाव दर्गह नहीं सिझ है झूठ सुनाही ऊ पयाल मोहे व्याप माया जाल अवर करतूत सगली जमदान गोविंद भजन विन तिल नहीं मान हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए चार पदार्थ देखो मांगे साल बिना की सेवा लागे देखो अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे देखो अपनी शोभा लोरे साध संग ए होमे छोरे देखो जन्म मरण ते डरे साध बिना की सरणी परे जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक का बल बल जासा सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गण्य सबसे ऊंचा जा का मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना ते खै सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निर्धन कौ धन तेरो नाओ मिथावे कौ नाव तेरा थाओ निमाने कौ प्रभ तेरो मान सगल घटा को देहो दान कर्ण करावन हर स्वामी सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत नित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी औसत तुम ते होए नानक अवरण जान सुखोय सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हरिया सगल उद्यम मह उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक दे घट वसै हर

में भी नाल अष्टपदी रमैया के गुण से पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सी गारिया गर्भ अग्नि में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोवन भोजन सुख सूध बिरद भया ऊपर साख सैन मुख अप्याव बैठ कौ दैन यह निर्गुण गुण कछु न बुझ है बख्श ले हो तव नानक चीज है जे प्रसाद धर ऊपर सुख वस है सुत प्रात मीत बनता संहस है जे प्रसाद पिवे शीतल जला सुखदायी पवन पाप अमुला जे प्रसाद भोग है सब रसा सगल समग्री संग साथ वसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संरचना ऐसे दोष मूड अंध दयाते नानक काड ले हो सब आते आद अंत जोरा कन्हार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जहाँ की सेवा नव निंद पावे ता से मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जहाँ की टहल पावे दरगहमान तिसे बिचारे मुग्ध पजान सदा सदा इह भूल नहार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो चढ़ना सो अस्त्र कर्माना जो होवन सो दूर पराना छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाई तिस पर हरे चंदन लेप उतारे तोय गर्दव प्रीत भस्म संग होय अंधकूप में पत्र बिकराल नानक काट ले हो तब दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोग स्वान अंतर अगन बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे तरह अथाह जाकर अंतर बसै प्रभ आप नानक ते जन सहज समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै करगह लेहो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कहिया तव समझै भोरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तव पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गवन करतार करना में दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाय सुआवै न चीत जो बैराई ता सो प्रीत बलुआ के गृह भीतर वसै अनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल न आवै मूढ़े पीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह याहु जुगत बिहानी कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम तह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूब कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देनहार प्रभ छोड़ कै लाग अन सुआए नानक कहू नस्ती जाए बिन नावे पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछ पावे एक बस कारण विखोट गुवावे एक भी न दे दस भी हिर ले तौ मऊड़ा कहो कहाँ करे जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको की जय सद नमस्कार जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व सोख नानक तिन पाया अगंत साहो अपनी देरास खात पीत बरत अनंद उलास अपनी अमान कछ बहुर साहो ले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होए जिसकी वस्तु तिस आज्ञा रख है प्रभ की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पांत माया के हेत सरपुर होवत जान अनेत बिरख की छाया क्यों रंग लावै ओ बिनसै ओह मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लप्त रहो तह अंध अंधार बटाओ क्यों जो लावै नेह ताको हासन आवै केह मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या होमै ममता माया, मिथ्या राज जोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया ते खासा, मिथ्या त्रो मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्द को रह, मिथ्या नेत्र देखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बुझे मिथ्या सब भये सफल देह, नानक हर हर नाम लय। बिरथि साकच की आर जा साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ता कह दुर्गंध, दिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना जो के ती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो पुन पुन के निराक नाम, धन धन तेजन देह कट बस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कुमावत, मन नहीं प्रीत मुख गंध लावत, जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू तीन, अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै, जिस कह अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरह संसार, जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है माने, आप है आप करत ने बेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा, उपाव स्यानप सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस भाव है तिस लय लड़ लाए, थान तनंदर रहया समाए, सो सेवत जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक, काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदि, जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे, जय प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै ध्याए सदा मन अंदर, जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पह सिमरहु तिस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई है ध्यावन जोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसै त्याग कत अगर लुभावै, जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय, जय प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस रसन बखानै, जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म, सब जी जपत दर्द मान पावे नानक पत सेती घर जावे, जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो ते सदाम सुनेही, जे प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत, जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै, जय प्रसाद तुझको ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे, जय प्रसाद आप हुकम पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै, जय प्रसाद असल हस्त असवारी मन तिस प्रभु कौ कबहु न बिसारी, जय प्रसाद बाग मिलख धना रास तोए प्रभु अपने मना, जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई, तिसै त्याए जो एक अलख है यहाँ उहाँ नानक तेरी रखै, जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान, जे प्रसाद तू आचार व्योहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी, जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह, जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख है दसमाद, जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख है जय वसना, जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है, जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है, ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो, जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस सब को मूल न मन हम विसार,
जय प्रसाद तेरा प्रताप, रेमन मूड तू ता को जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिस हजान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पाल है साच, रे मन मेरे तू ता चोराच। जय प्रसाद

प्रभु दया ते कमल विदास, प्रभु तो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सर्वन धान प्रभु तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया, जित जित लावहो चित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए, सुन मिता नानक बिनवंता, साध दिना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध के संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत न बेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध का संग अगोचर मिलै, साध का संग सदा पर फुलै, साध का संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रेन, साध का संग मनोहर बैन, साध का संग नकत हूं पावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध का संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब नीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बीगा पैर, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजा सब आप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध कै संग न कब हूं तावे, साध कै संग सदा सुख पावे, साध संग बस अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग महल पहुँचै, साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म, साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्वथानुगम, नानक साध कै संग सफल जन्म, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध कै संग कलोकत है, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग नांदिर्थ जावै, पार ब्रह्म साध हृद वसै, नानक कुदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग घट घट जीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान, जेता सुन चेता बखियाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध सब भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न देखे एक दिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व कौ शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यों सुद्धा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा,
मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी।

ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सब उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संहिता। ब्रह्मज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभाप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाय अधाखर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी का अंत

तार अस्तरी मिथ्या नाही रचना पर्स मन है प्रीत निरंजन दर्श परत्र रूप न पेख नेत्र साधु की टहल संग संग हेत कर्ण न सुन काहू किंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरय मन की बासना मन ते तरह इंद्री जत पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तनंतर सिमरन।

साध संत पापा मल खोवै, तिस भगौती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अपै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बछावै, अंत ऐसा भगौती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म सोदै। राम नाम सार रस जीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमरत बुझै मूल, सूखम मह जान अस्थूल। चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पात्र को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगान। काहूं जुगत कितै ना पाइया धर्म, नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नगरी आया, दास दसम तन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहा।

ऐसा अमृत तैसी दिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ, आपे कर्म करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन होग, पसरे आप होए अनंत तरंग।

नानक रचना प्रवृत्ति बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होय पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट वन पर में उदासी।

चित चित लगना नानक करते की जाना करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्व पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी दसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सशिर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल सामग्री अपने सूत तार नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्थ शास्त्र कई कोट किए रतन सुमन।

पिवे अमर पहे सद सद ही जीव है कई को नाम गुण गाव है आत्मरस सुख सज समाव है अपने जन को साथ साथ तुम्हारे नानक हुए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अस्परी।

गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मोहन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन भरमे भरमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवै नचावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोय, कबहू साध संगत पावे।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरकपाती होवत स्वान जो जन में जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहु जोन प्रमावे

मान कथ संग न जावे, बहुलस कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतरता का होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन मह होए जाए पशमंत। किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जा का मिटा दमान, सो जन नानक दर्द है परवान। कोट कर्म करे हों तारे, शर्म पावे सगले बिरथारे।

सब कछु पुस्ताओ करने हार उससे भिन्न कहो किछु होए शांतनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माँ है नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदे संत का दुखन आर जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छुटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सोबाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत का दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरह संत के दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग जो लवे संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन का दुखन तृष्णा में जले संत का दुखन सब को चले संत का दुखन तेज सब जाए संत का दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाए।

संत का नंदक महाहत्यारा, संत का नंदक परमेश्वर मारा, संत का नंदक राज ते हीन, संत का नंदक दुखिया अर्दीन, संत के नंदक को सर्द रोग, संत के नंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित, संत के दुखी को दान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के तरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अध बीच से टूटा, संत का दुखी कतै काज ना पहुँचे, संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर के थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किस ना है, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवन राखन हार, नानक संत पावे तै ले उबार, संत का दुखी यों बिललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटा अकेला, ज्यों बुआर चल खेत माहें दुहेला, संत का दुखी धर्म से रहत, संत का दुखी सब मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई पया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेट कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसह त्याव हो सास गिरात, सब कछ वर्त तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया।

नानक दुख भरम पौ जाए अस्पदी। मानक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान। जिसकै दिए रह अघाय, बहुरना तृष्णा लग आए। मारा राखे एको आप, मानक कह किश नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक विघ्न न लागे कोई। उस्तुत मन मह कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रचना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो। नैनो टेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटह पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उज्जल मथा। बड भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी। एक को एक, एक पछाने, इत उत की ओह सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हे निरंजन जानिया। गुर प्रसाद आपन आप सुझ है, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। साग संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओह हर जन रहत। अनजन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मह सोई निर्बान। एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिय जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसह न लागह दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत होइला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे। जैसा था तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुर प्रसाद तत सब बुझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई असूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल मह आप, अनक जुगत रत थाप उथाप। अग्नासी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मंड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए तानांत जाप। जिन कव जाता सो सो भावंत, सगल संसार उद्र

0: सेवा सोई लागे।
1: जिसनु कृपा करे वड भागे, नाम जप पावे विश्राम। नानक तिन पुरख कौ उत्तम कर मान, जो किछ करे सो प्रभ कै रंग। सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवे सो होए। करणे हार पछाणे सोए, प्रभ का किया जन मीत लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए। ओए सुख निधान उन्हों बनाए, आप कहो आप दीनो मान। नानक प्रभ जन।

त्यों गुरु का शब्द मन अस्तम मन ज्यों पाखान नाव चढ़ तर प्राणी गुर चरण लगत निस्तर ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होय विगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बाछो धूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे दिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देव अनहार अवर त्याग तू तिसह चितार जो किस करे सोई सुख मान भूला काय फिर अजान कौन बस्त आई तेरा संग लपत रहो रस लो भी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद छेती घर जाहे जिस वखर कौ लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संत है संग चाल अवर त्याग बिख्या जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उज्जल हर दर गह सोय एह व्यापार विरला व्यापार है नानक ता कह सद बलहार है चरण साध के धोए धोए पियो आप साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु रख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है ओट गही संत हिंदर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवा लनहार भूखे को देवत आधार सर्व निधान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका ओ करना जोग तिस बिंदु सुर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करनी

अस सदी अब नासी प्रभ मन मह राख मानक की तू प्रीत त्याग तिसते पर नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपाण धाम दयाल बख्शंद साल तेरे की चरण पाओ नानक कह मन इह नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फो तिसका मंत्र न जाने होर अनुरूप मंगल सब जाकै सर्व थोक सुनिया है घर ताकै राज मह राज जोग मह जोगे तप मह तपी सरग्रस्त मह भोगे त्याए त्याए भगत सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाके लीला की नित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिन दे

सब ठाए ना ना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप ती वै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन सर्वन कर कृपा जिस आपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दै प्रवेश सत नित बुझै जो कोय नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी नित गत जिसकी सृष्ट सो करण हा।

अब प्रभ का रंग रात जन रहे, गुर का वचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तर संसार। जन का सेवक सो वड भागी, जन का संग एक लिव लागी।

कुमार है, अपने जनका पर दाता है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है, ताकि जग में कोई

सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह काल रख है, भसम करै लश्कर कोट लाख है, जिसका साथ न काटत आप, ताको राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भात,

जप नानक प्रभ लख वडाणी बारंबार बार प्रभ जपिया ए अमृत एह मन तन प्रतिया नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट आया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन कृपताने मन तन्ना मह नाम सुमने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सर काम बोल हो जस जिह बा जिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करहे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हो आहोवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पहचाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो आत पहर प्रभ बसह दूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओट लेह मन तन अपना तिन जन देह

अष्टपदी सतगुर सिख की कृपा प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुर्मत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार से हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख बड भागी है सतगुर सिख का हल्क पल्क सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर का ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सद ध्यावे मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले।

बल जाओ। सर्वन धाम जीव का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंगराता। ब्रह्म में जन जन है पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम। सैस स्यान तो लया न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए। सफल दर्शन तेख पुनीत, कर सच्चरण गत निर्मल रीत। भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर बचन करन आघने, मन संतोष आत्म पतियाने। पूरा गुरु को जाका मंत्र, अमृत दृष्टि।

ना पहुंचत प्राणी, अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए, अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे, सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जित प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सत उपदेश सेवक कौ दे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तपत माहे ठांड वरताई, अंध भया दुख न थे पाई, जन्म मरण के मिथे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल व्याद मन ते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही, अपने

दृढ़ कर गहु हो नाम हरवत इहो धन संत हो भगवंत संत जनासा निर्मल मंत एक आस रख हो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस धन कौ चार कुंठ उठताल है सो धन हर सेवा ते पाव है जिस सुख कौ नित बाछ मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरणी अंक उपावी रोग न जाए रोग मिटाए हर अवखद लाए सर्ब निधान है हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कहनाई दह दिस तावत आवै ठाए ताको बिघ्न न लाग कोए जा कर दह बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख

अस हस्ते रथ असवारे झूठा डंप झूठ पासारे जिन दिए सुबुदय नाम बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुरु की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहो मन

सब की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ता ने, पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने। सुभर परे प्रेम रस रंग, उपजा चाओ सार कै संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगाश अनगिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रब सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई।

नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तनंतर इहि सुआओ नेत्रोपेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए।

जात। अष्टपदी जब अकार यह कसना दृष्ट देता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर्ष शोक कहुक से व्यापत। जब अपन आप आकार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा, नानक करना हार न दूजा। जब होवत तब केवल सनी, तब बंद मुक्त कहो किसको गनी। जब एक हर अग्न पार, तब नर्क स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण तब सहज स्वभाई, तब शिव सतत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन निड्र कवन कत डरे। अपने चलत आत करने हार, नानक ठाकुर अग्न अपार। अब नासी सुख अपना सुन, तह जन्म मरण कहो कहाँ बिना सुन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता, तह दिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौमान कौन अभिमान।

नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाए, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए, जह सर्व कला

आप जय अचल अशेर अभेद समाया उहां किसे व्यापत माया आप उसको आप है आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप पतियार तह कौन कथा कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक उसको आप है पहुंचा जय आप रचयो प्रपंच अकार तेह गुण में तीनों विस्तार पाप पुन कह भई

नानक सगल सृष्टि का देवता जी जंत्र सबता कै हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखै तिस कोय न मारै सो मुआ जिस मनो विसारै तिस ताजावर कहाँ को जाए।

अपने कर्तव्य जाने आप, अंतर्जामी रहो व्याप, प्रतपालै जी अनुभव पात, जो जो रचे सो तिसै ध्यात, जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करहे हर के गुण गाए, मन कर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक इक जान्या, जन लागा हर ए तैनाए, तिसकी आस न बिरथी जाए, सेवक कौ सेवा बन आए, हुकम बूझ परम पद पाए, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अनगन पूजे गुरु के पैर, एह लोक सुखिए परलोक सुहेले।

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का एह सुआओ। आठ पहर प्रभु देखो नेरा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुनो उपदेश हृदय बसाव हो, मन इच्छे नानक फल पाव हो। हलत पलत दुए लेहो सवार, राम नाम अंतर उर धार। पूरे गुरु की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपहु लिवलाए, दुख दर्द मन ते

सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर्जामी पुरुष प्रधान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै नित न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया।

आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक जिस जन आप बुझाए सर्वभूत आप वर्तारा सर्वनैन आप ते खनहारा सगल समग्री जा

ओत पोत आपन संगराच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एह जान, जो जाने तिस सदा सुख होए। आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जनाया, जिस प्रसाद सब जग सतराया, जन आवन का एह सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ।

साध संग अग्न सागर तरह हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित जित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक।

रत्न संत कुमावत होत उधार आप कर लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकर मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे चरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेवक की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रभारी नानक ने भी खेप हमारी प्रभु की औसत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहर न होवे अब निजान हर धन खात तलै जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नवनिध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग तप ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता संदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख तने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकि गत होए गुण गोविंद नाम तुम बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकर मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए पीत तिस जन आवे हर प्रभजीत जन्म मरण का दुख निवारे दुलभ देह।

इंदुन तीतो मुखणा पौरी दित्यम पाए मन विसंदड़ो सच सौ नानक हबे दुखड़े ओलाए पौड़ी कोट अगा सब नाश हो है सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाही है हर के गुण गाओ जन्म मरण पै कटी है ने चल

0: भेष से हर भेष विष्णु है।
1: ऐसा नहीं लग रहा है गुरु जी बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्यार है गुरु का, बार बार उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, बार बार उसकी स्तुति गायन कर रहे हैं मेरे धन गुरु कलगीधर पातशाह जिन्हें अकाल पुरख वाहिगुरु सामने खड़ा है, कि बार बार जिन्हें बच्चा मां मां मां करता है, मेरा गुरु पातशाह अपनी मां की बांह फड़ के बाणी उच्चारण कर रहा है कि सर्वत्र मां नहीं है, हर जगह तेन मान मिलता है वाहिगुरु, सदैव प्रधान नहीं है, कि सब तो वड्डा सदा सदीव ही वड्डा है वाहिगुरु, कि सर्वत्र जापइए, सब जगह तेरा ही जाप हो रहा है, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में, कि सर्वत्र थापइए, सब तेरी ही रचना, तू सब नु थापिया है, कि सर्वत्र भाने, सब जगह तू ही प्रकाशमान है वाहिगुरु, कि सर्वत्र माने, सब नु मान देने वाला भी तू है वाहिगुरु, कि सर्वत्र इंद्रे, सब के उत्ते राजा इंद्र तू आप है मालिक है सरदार, कि सर्वत्र चंद्रे, सब नु चंद्रमा वर्गी शीतलता मिठी रोशनी देने वाला वाहिगुरु तू आप है, कि सर्वम कलिंग में परम मिठे तेरे बोल, खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मंगो, कैसे मिठे बोलने वाले, पूछो भगत नामदेव जी ने, बड़ा प्यारा बड़ी प्यारी कथा, बहुत प्यारी कथा, भगत नामदेव जी ने माने चाह गया, मैं गरीब वाहिगुरु, मैं तेरा सेवक, मैं तेरा भगत, और चढ़न को घोड़ी दे दे, ऐसा पठान आ गए, उन्हें फड़ लिया, अगे बिगाड़ी फड़ते सुन, बिना पैसे देते मजूरी करानी नाल मारना, पैसे नहीं देने मारना, उन्हें कोई घोड़ी का बच्चा सी, उन्हें कहा चुक है साढ़े अध्यात्म संप्रदाय टीके बड़ी सुंदर कथा, भगत नामदेव जी बाणी की पंक्ति नहीं है, संप्रदायी महापुरुषा ने पंक्ति जोड़ी भगत नामदेव जी दिल दे पाव, कहने रे ठाकुर तैं भली की नहीं, तले को मांगी ऊपर को दी, मंगी सी चढ़न वास्ते तू साढ़े चढ़ाती घोड़ी, चुका जो देती बच्चा चुकाता, तुरी जा रहे हैं तो इन्ने च पिछों श्री कृष्ण जी महाराज उन्होंने इष्ट सन, उन्होंने पठान रूप आए सन, उन्होंने हाक दी और छेती छेती टूट हले आ रहा, तो भगत नामदेव जी समझ गए कहने पठान नहीं है, ऐसे मेरा इष्ट ही आया मैं सोची देन, तू माया कितने फस गया तेने बहर कटिया से, फकीरी देनी भी माया चो बहर कड़ना है, कभी बाबा फरीद का जीवन पढ़ो सारिया गलां खुल जाए, कि औला खा रहे ने डेले डेले भगत निजाम निजामू जी निजामदीन जी जिन्हें दिल्ली हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, वो सेवक सन बाबा फरीद जी के, तो पदार्थ खत्म हो गया आश्रम में, क्योंकि बन देने सन बाबा फरीद बड़े बड़े शहनशाह आते सन चरणा पे, पदार्थ ना बन देना दे ले, कुछ आटा तो दे ले, जंगल तो तोड़ के लियाए रोटी बनाई खवा दी, एक दिन आटा भी सी डेले भी लिया उबाले, लून नहीं थे, किसी बनिया की दुकान तो लून उधारा ले आए, तो बाबा फरीद जी कहते हैं रोटी चुकी नहीं जा रही, वो कहने महाराज रोटी तो ही कहने नहीं चुकी नहीं जा रही, फरीदा निजाम कितों लिया है, कहना महाराज आंदी तो रोटी आटा तो ही कहने डेले नवे जंगल तो लिया है, कहते होर की पाया, कहते लून, कहते लून कितों आया, बाबा फरीद जी जानी जान सन, कहते लून कितों आया, कहते महाराज उधार लिया, कहते बस कहन के सारी दुनिया का राज देना सी तू सानू करजाई कर दिता, फकीर की फकीरी बड़ी मस्त फकीरी, कई बारी वाहगुरु इस तरह खो भी लैंदा है सोझी देने वास्ते, सो गुरुदेव कहते हैं इस फकीरी च एक आनंद है, गुरुदेव बख्शिश करते हैं कि सर्वत्र थर पइए, कि सर्वत्र भाने, कि सर्वत्र माने, कि सर्वत्र इंद्र, कि सर्वत्र चंद्रे, कि सर्वम खलीमे, भगत नामदेव जी कहते चंगी घोड़ी चुका दी पर सोझी आ गई, कृष्ण जी महाराज क्या हले आ रहा छेती छेती चल, कहते हैं बोल तो पठान दे नहीं है, इन्हें प्यार ना पठान नहीं बोल रहे, भगत नामदेव ने शतोच्चारण किया हले यारा खुशखबरी, खूब तेरी पगरी मिठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मंगोल, वो तू कितों मंगोल आ गया द्वारका नगरी, यह तो मेरा इष्ट ही आया प्यार ना ला खुश सतना, गुरुदेव कह रहे हैं कि सर्वम कलीमे, कलीम कहते मिठी जुबान वाला, तेरी जुबान बड़ी मिठी है भाई, कि परम फहीमे बड़े सोने तेरे बचन, तेरी बड़ी सोनी विद्या है वाहिगुरु, कि आकल लामे सारी विद्या दा तो स्वामी है मालक, कि साहिब कलामे परम मिठे परम सोनी तेरी बोली है, मिठ बोलड़ा जी पढ़ो खां प्यार नाल, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो संभल सकी जी, वो कदे ना बोले कि साहिब कलामे के हुस्नल वजूद है, बहुत खूबसूरत तेरा वजूद है वाहिगुरु, तमाम रजू है सब भी संभाल तू कर रहे हैं, सब पास तेरा ध्यान है, हमेशा सलामे हमेशा ही तू सलामत है, सलीखत मुदामे तेरी बड़ा सोहना सुचज्जा तरीका है तेरा, गनीमुल शिकस्त वैरिया तू शिकस्त देने वाला है,
2: గరీబుల్ పర